दूजै भाई परमाएंदा जप तप संजम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कमाही गुर कै शब्द मिलिया सच पाया

खबर न पाई अंत गया पछताईंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने।

आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझह संभाव है तू आपे मेल मलाएं दा अगम अगोचर कीमत नहीं।

अंतर परम गया पौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोला एंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाई आपे करे कराए करता ज्यों भावै ते

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई, आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजे बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

गणत चुकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा

फिर दयाए बुट्ठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएंदा। सतगुरु ते विछड़े तिन्नी दुख पाया, आन दिन मारिया है दुख सबाया। मत्थे काले महल ना पावे, दुख ही विच दुख पाएंदा। सतगुर सेव है सेवद भागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी। सचो सच कमावे सद ही, सच्चै मेल मलाएंदा। जिसनो सच्चा दे सो पाए, अंतर साच परम चुकाए। सच सच्चै

बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवै, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवै, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई।

जय गुरु कृपा ते मन तन पीजै रसना नाम त्याए रस पीजै रस ही ते रस पाएंदा महलै अंदर महल को पाए गुरु कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मलाएंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज

अनदिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ न आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेख सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हो मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदय रखो उरतारी।

दूजै पाए परम पलाया, हरना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिति कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े हन दिन वाद समाले, नाम ना चेतै बद्दा जम काले, दूजै पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए।

इस जानदे बिल मना लाएंदा इहो मन पै भाई रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को इहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाएंदा मन मुख बहुत करे अभमान।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी।

पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चा ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई तन मन सीतल क्रोध नवारी हम मैं मार समाया।

पूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाई सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाई बहु संकट जोनी परमाई जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी गुर

अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया, ज्योति ज्योत मलाया, पंच दूत चितवह विकारा, माया मोह कायो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा, सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा, सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया, घरे अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई, उथे सोग वजोग ना व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरह बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावह, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई, सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया, काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगह गुर शब्द निवासा, उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई, निज कर वासा पाया, काया सोदह शब्द विचार है, मोह ठगौरी परम निवार है।

कारा, गुरमुख सच वसै घट अंतर, सहजी सच समाई हे, सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाही, गुर गुर करत सदा सुख पाया।

लाभ रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागी। नानक तिनकी फिर गत हो।

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरणी चित लाई है। जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आखव काणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है जां को राखे हर राखन हारा ताको कोई ना साख समार।

भरपूर समाही सूके ते फुल हरिया की तन हर त्याव हो चोज वडाणी है जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है जो जिया की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने मूर्ख स्यों नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी है ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सबते अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी है ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसे सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी है अन दिन नाम जप हो बनवारी।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भव भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों

तुझै पै करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोब सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीस है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, तिस बिन दूजा अवर ना दिस है, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता।

सहज घर तेरे, हमयो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सबसे जंत लोवे, टूट न आवे पूर भंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाही, कर है भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाही, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूर लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हम्यो चोल चोल पी जाहे। मरै नाही सद सद ही जीवै, अमर भया बनासी थी।

सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहि बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना पाया सराफी

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यान नाही। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पानाही। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी केई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाच है जन तेरे, नानक सद कुर्बानाही। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आई।

अर्थ नहीं है। जिसे आप पुलाए सोई पूले, सो बूझे जिसे बुझाएंदा, हर कसोग का नगर एह किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

प्रभु भी परवाह काठ सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दुइ समसर सही है हउ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यों पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना श्रिष्ट उपाय धरी सब धरना जन नानक शरण पया हर द्वारे।

प्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रच्योन पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वेख कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटह सब बंधन एहो परम मोह पर जालना जह राखै सोई सुख थाना सहजे होए सोई पल माना बिनसे बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिनसे अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना ऐसा कोवड़ भागी आया आठ पहर जिन कसम ते आया तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना एह बख्शीस कसम के पावा आठ पैर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना भूल गवारा मिथन महाराज।

दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायण। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायना। पार जात लोड़ह मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तुष मात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरम पर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहलै लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब कूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना। कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाभ हो जन्म पदार्थ सोजिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरा कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना। गुर का शब्द वसै मन जाके
दुख दर्द प्रमता का भागै सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाकै मन बूठा सो पूर कर्मा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवरमा कही है दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवै साध संग हर कीर्तन गावै सगल मनोरथ ताके पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांच जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अव गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवै पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिय संत संग मिल सागर तरिय अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मन तन अर्प धरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाई है सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई इस बिन दूजा कोई नाई आद माते अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाचै तुम्हें अराधै पतित पावन पूर्ण प्रभ साधै एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठ रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना।

दीता कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आए जो तुझ पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए इहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बारक थारे ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही कौ घास एक ही कौ राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाए समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारेखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन अजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किश तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माच काश पूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देण सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन कणी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग धर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अशल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिले जिसे आप मलाही, आपो हो कोहे ना पावेगा, आपे गोपी आपे काना, आपे गहू चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी ही गुण कमन बखान, सहस फनी सेख अंत न जान, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ऊट गही जगत पित सरनाया, पै भयानक जमदूत दुतर है माया, हो कृपाल इच्छा कर राखो, साध संतन कह संग संगा, दृष्ट मान है सगल मतेना, एक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्बला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है ते आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भावे है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा बार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेक मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारफत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, पूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले महमौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथे खैरी, पंजवे पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोरो खाना, दिल करे आओ तो वो मैं लाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई,
अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत या कीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यो कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजे प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका तिसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ता को लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। अनद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते ते

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरे नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ बडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

नाच ही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणी तन तन से जन जिन हर सेविया तिन्हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़वड़ी काली मनहुक सुध जे गुण होवन ता पिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया हन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन और नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निहचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवन जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

सहज बनस्पत फुल फल पवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिंह से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जाव है हत क्रोध स्यों लूज दे।

हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारियो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवां पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपरपरा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित कर है बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकती हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां अगाह कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कही ना ठाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण कु मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे फिरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै
जिन जन गुरमुख बुझया सो चहो कुंडी जापे जो नर उसकी सरनी परे तिस कंबह पापे जन्म जन्म की मल उतरे गुर तूड़ी नापे जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापे हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपे ऐसी शोभा जन की जे वडहर परतापे सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी

कुमार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दियां नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वस दा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्रीत हिंजा नाओ महला पंजवा कपड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंग जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दीवान अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए हयाओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला।

प्रसाद अनपहो किन ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहो होए बना हम्बे सहो हदूर देखै ता पहो पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बना हम्बे तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बना हम्बे चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम्बे सतगुर बिन बैराग ना होवी बैरागी अड़े।

लंबै। कहो कबीर एक बेनती बराजी अड़े, मोको भौजल पार उतारवणा हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो, परियो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाव। सूरा सोपै।

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया मन आदि गुण आदि विखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम से

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माता शतर तरै रहाओ। जाती शोत जगत को लागे, तां पर तुही तरै, नीचे है ऊंच करै मेरा गोविंद, काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरै, कहरव दास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सबै सरै मारू, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जा केरे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नव निध कर तल कै, हर हर हर ना जपस रसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाव। नाना ख्यान प्राण बेद बिद, चौतीस अक्षर माही, व्यास बीचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध अपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी, कहरव दास उदास दास मत, जन्म मरन पै भागी। तुखारी शंत महला पहला, बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला, हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना।

पापी नानक तीजै त्रे बिदलोका माया मोहे व्यापी चौथा पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम।

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वस्ते खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए धड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महल।

गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विशुन्नी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अनदिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मन मुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवरना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तारह तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव है चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूकाया।

अल्ला राम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम।

गुण गाए राम रसाए रसिय है गुरु ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी संत महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीविए राम जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीविए राम क्यों अमृत पीविए हर बिन जीविए तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अनेक जन्म पाप कर भरमे हुण तौ शरणागत आई दया करहो रख ले वो हर जियो हम लाग है सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाए काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हों सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेओ अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना हमरे

सुन प्रभु मेरे, निमक दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करह ता पीवा, आस प्यासी

चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास तां कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपुरा मिले लखावी रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी रे हर हर नाम अमो

गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर गोष्ट। साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन, राम नाम रसायन हर राम नाम राम रम हो रे। अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता, ए दूर करहो आपन गहोरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं उपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ। नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात। सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन धूर जन बाछत मिले।

मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी।

और रहाउ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारु तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल अना

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से

पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुस भागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारी निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारी नहीं दोख बिचारी पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

भाऊ भगत स्यों काज न कछु है, मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान। कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान। कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाव। गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए। मरहत लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए। कहत कबीर राम की ना सिमरहो, जन्म अकारथ जाए। राग केदारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही। चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी हर जप जन्म गयो। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हों ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया। रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी। भैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पये बहरे। मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई। राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ। जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी रहाओ। ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा। काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै। आप मार

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन त्रिपत ना आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारी वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसै कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत

दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ मूल मोह कर करत जगत अपाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै इहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी कहत नानक जो जाने पियो आद पुरख निरंजन देओ भैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा भवजन पार उतारन हारा गुर प्रसादी हर नाम संभाल सद

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे औखे होवै चोटा खाहे आपे करता देवै सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरू महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुभाए गुरमुख नाम वसै मन आए आपे वेखै वेखणहार नानक नाम रखो उर धार भैरों महला तीजा कल युग मह राम नाम उर धार बिन नावै माथै पावै शार राम नाम दुलभ है भाई गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ राम नाम जन भालह सोए पूरे गुर ते प्राप्त होए हर का पाणा मन्नह से जन परवान गुर कै शब्द नाम निशान सो सेव हो जो कल रहे आतार नानक गुरमुख नाम प्यार भैरों महला तीजा कल युग मह बहु कर्म कमाहे ना रुत ना कर्म थाए पाहे कल युग मह राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ तन मन खोज करै मह पाया गुरमुख राम नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया तेहो लोए कल युग मह हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई भैरों महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापे तृष्णा जलह अधकाई मर मर जमह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हऊ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग ना जाई रहाउ सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई त्रै गुण

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह को रव रहया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताई नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजन तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दर बार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार।

गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई। भैरो महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सिउ कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे,

फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर किरपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नदर निहाली।

मन जाप, हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप। रहाउ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावे, तिस कै नेड़ कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरू महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होवै जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार। मद सूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार। रहाउ जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत ता किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करे सोई भल होसी, हर त्याव हो अन दिन नाम मरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार। नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। भैरू महला चौथा, ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हौ बलिहारी, हर हृदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हृदय वसिया बनवारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी।

सो तुद मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरे मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई देवायत गणने रहाओ गुरसिक हर बोलो हर गावहो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख घने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवने।

सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तनता। कर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भैरु महला पंजवां, वर्तना रहो ना महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निधाना। एक गुसाई अल्लोह मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा। रहाओ हज का बह जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कहो कबीर एहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। भैरु महला पंजवां, दस मिर्गी सहजे बंद आनी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी। संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए, अहेरा पायो कर कह गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। भैरु महला पंजवां, जे सौ लोच लोच खावाया, साकत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीजे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दह दिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया, त्यों साकत ते को ना ब्रासाया। कित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया। भैरु महला पंजवां, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिन्ह अपाए तिस को पीर। गुर गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत धन नह पारना, धन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई भैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

सच्चे पातशाह ने तरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन ते आए नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण भैरो महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रब का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म बीचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरों महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा खे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाएं, रहाउ दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवा, चौपदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह तिन

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

सह पीखियो जत जंगम का पड़ाई तपी तपी सर मुन मह पीखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ती सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाइ जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करे बिक संचै नित डरता फिरे है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

पर ग्रह जाय दरबिर मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता तिन पहो दूर किया एक प्राता जो तू करह सोई फुन होए मारे न राखे दूजा कोई क्या तू सोचे है मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किस जान है सिरजनहार जिसे ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सुवार तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ ना साके कोई पहरों महला पंजवा तव कड़िया जे होवे बाहर तव कड़िया जे विसरे नरहर तव कड़िया जे दूजा भाई क्या कड़िया जा रहया समाय माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नावे भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ तव कड़िया जे दूजा करता तव कड़िया जे अन्याय को मरता तव कड़िया जे किस जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने तव कड़िया जे फूल रिजाने गुर कहया जो हुए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा ज्यो भावे त्यो करह निबेरा दुतिया नास्त इक रहया समाए राखो पैज नानक सरनाई पहरू महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठे कैसे गावन हारी जील बिना कैसे बजै रबाब नाम बिना बिरते सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जिहवा कहां को बकता।

कहा कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु, बासन रोग भवर बिनसानु, हेत रोग का सगल।

फिर जोनी परम रोग बंद रहन रती ना पावे, बिन सतगुर रोग कतह ना जावे। पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाहा पकड़ रोगों काड लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। भैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता। चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे। चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घरवासी। हम सुख पाया।

हे अन्ते अपूछे, राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने, भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भय दयाला, नानक दास देख भय निहाला, भैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ, सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ, नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहियो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया परपूरा। सो जापै जिस सतगुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जाको प्रगट भये गोपाल, ताकै दर्शन सदा निहाल। सर्व गुणा ताकै बहुत निदान, जाको सतगुर दियो नाम। जाको भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवां, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे

की आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै,

एक मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाऊ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सगल

थान बैठावो दास अपने को भगती लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसे जाने अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत मंडल

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हों मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जां राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किछ जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बहुतै धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संग पाइए वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावे निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निदान बेअंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवां, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान, सफल होई जप हर हर नाम। कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर

नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अवनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर।

जन धन भैरू महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारथ, प्रभु हमारा सार।

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती

पंजवा निंदक को फिट के संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को रखनहार, निंदक मुआ निंदक के नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ, निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे, निंदक को दई छोड़े नाही, हर का दास किस बुरा ना मांगे।

पिंड तन तिसकी रास सोई मेरा स्वामी करनै हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ जाके ग्रह में सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा, राग पहरू महला पंजवा, पड़ताल घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी, अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ, अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुनत ललत, अनक तार मुनि, अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद, अनक दोख अनक रोग, मिटह जस सुनी, नानक सेव अपार देव, तटह खटह बरत पूजा, गमन पवन जातर करन, सगल फल पुनी, भैरो अष्टपदियां महला पहला घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आत्म मह राम राम मह आत्म, चीनस गुर बीचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटै हो मारा, नानक हो मैं

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभी दैत रहे चाख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

नानक तिनकै सद बलिहारे राम नाम उर धारी भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

परवाह। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो सात्या साह, नाम हीन नाही पत वे साह। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जो नी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्ते तत मलाया, भैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र

कै नाद कोट अखारे चलत विस्माद कोट सकत सिव आग्याकार कोट जी देवै आधार कोट तीर्थ जाके चरण मझार कोट पवित्र जपत नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महिमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो उपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

वहर पिस संग मन राती रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

आवत संग न जात संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दो

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहरे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब पाई।

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई। महला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरता हो सेव जो पाथर की पाई पाई तिसकी काल अजाई जाई ठाकुर हम

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर कौ व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापे।

राति साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही तब

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाऊ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रब राया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरे ओ गढ़ को राजा, भगवत पीर

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रय स्थान तीन त्रय खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादश दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध।

ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर इशनान सोहं सो जाको है जाप जाको लिप्त ना हो।

मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे।

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिर, इंद्र कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे धरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

खीर खान की हो ना पावे, कबहू घर घर टूक मगावे, कबहू पूर्ण चने बिनावे, ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव। बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी। भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राख। पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नख बदारे हो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्याव। राम अपै पद

ऐसी क्यों हुई, बिस्मिल किया न जीवे कोई, मेरा किया कछु न होए, कर है राम हुए है सोए, बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए, ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करो कह ता लेकर ऊपर धरो।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

ता पौ जल तरे जौ गुरदेव ता जन्म ना मरे जौ गुरदेव अठ दस व्यवहार जौ गुरदेव अठारह भार बिन गुरदेव अवर नहीं जाई नाम देव गुर की शरणाई भैरो बाणी रविदास जियो की कर दूजा।

कोई, पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ। सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अन पै रह। फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बुलाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मथै सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर पोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट का

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महाम मारखी चढ़िया सदा बसंत परपड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हऊ मैं सुरत वसार हऊ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहाऊ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत प्रापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत

नानक हरे ना सू कहे जे गुरमुख रहे समाए। महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए। रंग राते रंग है से तेरे चाए, किस पूज चढ़ावो लगो पाए। तेरे दासन दासा कहो राय, जग जीवन जुगत ना मिले काए। रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप, किस पूज चढ़ावो देव धूप। तेरा अंत ना पाया कहां पाए, तेरा दास

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख। को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद। जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर हो वग सार। हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार। बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग। जटा धार

रखाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किने ना पाया आदि अंत तै साहिब की करह सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवै ता सेवा करै गुर प्रसादी जीवत मरै अन दिन साच नाम उच्चरै इन विद प्राणी दुत्तर तरै देख अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस भावै तिसै खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मनह करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लुभाना, राम विसार बहुर पछताना, विसरत मलाए गुर सेव रांगी, हर नाम दियो मस्तक वड भागे, पौन पानी की एह दे शरीरा, हौ मैं रोग कठन तन पीरा, गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया, कर किरपा गुर रोग गवाया, चार नदियां अग्नि तन चारी, तृष्णा जलत जले अहंकारी, गुर राखे वड भागी तारे, जन नानक उर हर अमृत धारी।

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाम सूका संसार अग्न तृष्णा जलै वारो वार सोई करे जे हर जियो पावै।

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै तां शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मन मुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरै मर मरण सुवारै गुरु कै शब्द साच उर धारै रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए,

बनस्पत मौली चढ़या बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाउ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया।

शब्द सुनाई, इहो जग हरिया सतगुर पाई, फल फूल लागे जा आपे लाई, मूल लगे ता सतगुर पाई, आप बसंत जगत सब वारी, नानक पूरे भाग भगत निराली, बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर की बाणी बिटो वारिया पाई, गुर शब्द बिटो

चित लाई मन तन तेरा हरिया हुए एक हर नामा फल पाए रहाउ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हो मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नो बख्शियो न पाई शब्दे लयन मलाई तूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाई आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाए गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाउ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर सागत नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दुए सदे पए मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख भंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाउ मनमुख फिर हो मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देहो मलाए देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए रहाउ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे धन साबत रास उबरिया पाखंड भरम अपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मलावे नानक शांत होए मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड पुरख वड अगम गुसाई हम कीरे किरम तुमन से हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा गुर सत गुर चरण हम बनशे गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृपसे जन्म जन्म के किल विक मल भरिया मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाउ तुमरा जन जात अव जाता हर जप्यो पतत पवीसे हर कियो सगल भवन ते ऊपर हर सोभा हर प्रभ दिन से जात अजात कोई प्रभ ते आवे सब पूरे मानस तिन से धन वड्डे वड पूरे हर जन जिन हर धारियो हर उरसे हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी हर धार कृपा प्रभ मिलसे जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतत पवीसे बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके नित हर हर नाम रस गीदे ज्यो बारक रसक परयो थन माता थन काढे बिलल बलीदे गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे वड्डा भाग गुर सत गुर पाया विच काया नगर हर सीधे रहाउ जन के सास सास है जेते हर बिरह प्रभु हर बीदे
ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी बिन जल पेके सुख लीदे जन जपयो नाम निरंजन नर हर अपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्मना बिच रहो ठाकुर तुम पैज रखो हो अपनी दे हर भावै सुन बिनो बेनती जन नानक सरन पवीदे बसंत हंडोल महला चौथा मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवै तिल घर नहीं वासा पाईऐ गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाईऐ गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ हौ मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाईऐ रहाउ कर रतन लाल बहु मानक लादी मन भ्रमिया लह ना सकाईऐ ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाईऐ जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाईऐ मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाईऐ जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाईऐ बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान भया दुख बिखिया।

पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाई हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विट हो घुम वाई जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाई जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर पाई बसंत महला पंजवां घर पहला दो।

आनंद त्यों हर जन जीव है जप गोविंद सिंह रुचै सद भोजन मास रान देख सूरे चित उलास किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्ब रंग एक रंग माहे सर्ब सुखा सुख हर कै नाई तिसे प्राप्त एहो निधान नानक गुर जिस करे दान बसंत महला पंजवां तिस बसंत जिस प्रभ किरपाल तिस बसंत जिस गुर दयाल मंगल तिस कै जिस एक काम तिस साध बसंत जिस हृदय नाम ग्रह तां के बसंत घनी जा कै कीर्तन हर धुनी रहाउ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाई पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निरभउ जिन भउ पया सो सुखिया जिस भ्रम गया सो एकांती जिस हृदा थाए सोई निश्चल साच ठाए एका खोजै एक प्रीत दर्शन।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उधार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

त्यो हरे बूट साध संगत त्यों हो मैं छूट जैसी दासे तीर मीर कैसे उदाहरण गुर है पीर तुम दाते प्रभ देन हार निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ जिसह परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पय मुकत भगत अरादह जोग जुगत नेतर संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन अगाना हर रस है स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवा तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

नीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्य सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान, कर किरपा प्रभ कीनो दान, तेरिया संत जना की बांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर किरपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जां कै सिमरन नहीं संताप, खसम ते आई एक

जन प्रभु आप रखी दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाऊ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

फूल फूले, अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे, तुम मिलो हो प्रभ सुभागे, हर चेत मन मेरे रहाओ, सगन बास कूले, एक रहे सूख कठूले, बसंत रुत आई पर फूल ता रहे, अब कलू आयो रे, एक नाम बोवहु बोवहु, अन रूत नाही नाही, मत परम भूलो भूलो, गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा, मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे हर हरे, बसंत महला पंजवां, घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाई, हर नामै के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सत

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जेन बाजी घर आया।

0: परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पतीजै करण हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आप

थाप आपे बशरू गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाल।

ज्ञान मधुसूदन माधव ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ। कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी

कार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखाया ई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंट सलाम करहंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंच

अहम खीली एक रत्ती तिल ना कटाई, जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई। निंदक साकत खाव ना सके तिल, अपने घर लूकी लाई। जन को जन मिल सुबा पावे, गुण मह गुण परगासा। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी, जो हो दास।

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एहे बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत, सात शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम तो नह संगाई, बिख का माता आवै जाई। हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार। काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन

चरण जपायन विच दयो खुड़वा रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रह कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

तेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

तो जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए।

हौ तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवै बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देव राम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझ है सुजनता कशु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भवती।

मनमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरु आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरु आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया ओए पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलहा मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानु गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई।

लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाउ, दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलया।

हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वस गतियाणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाछ छाड जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बू

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए तां जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख बिच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे

अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाव जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

करह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लौ बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अम्बे अम्ब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यों उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यों तस्कर दरसानेहा आन अपाओ न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटी है जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यों रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे बिन पिर सबै बिख लाग्यो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय देसांग्यो हियो देओ सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना मोल दासरु देओ साध संगत अरदाग्यो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खाग्यो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाऊ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभ पाव दीजे साध संगत कृपानंद नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सारंग महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाई जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न

काजर मह परया बहुर बहुर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर भार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटै नाही अभिमानै नीर बलोवै अत श्रम पावै नैनु कैसे रिसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिया दर्शन खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रब रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ता कै हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कै हों बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बने आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सार महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्याव नानक मन तन दर्श प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए।

अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याए।

जिन स्यों गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में है, ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवां। हर जन राम राम राम त्याय, एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाई वड भागी, मन तन हुए बिगासा।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव।

तिरंगा अन नाही तुम भांति देहे आधार सर्ब को ठाकुर जी प्राण सुख दाती भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराती कहो नानक मैं सर्ब सुख पाया ए सुख बेहानी राती सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाउ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्बांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरे हो तंद बंद माया को रजन सबाई।

गा रहाउ। हर सेवो हर हृदय बसाव, हर पाया सत संगा, ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बस कर दीना, भोगो भोग न संगा। निरपौ भय नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी, बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे। देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ, छूटर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुड़ सुजानी। जे घर मह बैसन नहीं पावत, सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचन, जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ये पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है एहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी।

और जुतियाया सुबराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाव। प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा, वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ। हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम

कार्य सब सवरे हं रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकी, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरनी पाइए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ।

सूझै प्रभ बिन, कहूं को किस पह जासी, ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किस तुम ही पासी, हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अपनासी, कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की फासी, सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझ है सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जान है त्यों पारे रहाउ, जब भूखो तब भोजन मांगे, अघाए सुख सघारे, तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवारे, कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हारे, नाम न बिसरे तब जीवन पाईए, बिनती नानक एह सारे, सारंग महला पंजवां, मन ते पै पौ दूर परायो, लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाव, गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहुं तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो, नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो, करना आप करावने आपे, कहो नानक आप आपायो, सार महला पंजवां, अमृत नाम मन है आधारो, जिन दिया तिस कह कुर्बान, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारो, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन रंकारु, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडुकारु, आद मद अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारु, सारंग महला पंजवां, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्ब सुख ताहू कै पूरन, जां कै सुख है हरि रहाव, मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना, वड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना, थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारी, कहो नानक ते पवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारी, सारंग महला पंजवां, रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू

जह पारी तिन स्यों राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंज।

ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है वह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइए वड भागी, नानक संतन कै कुर्बान, सारू महला पंजो।

तुम तारे समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत सास सास हर गाय जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जाको छायो।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारंग महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभु संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत भरे भंडारी। कहो नानक सोभा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया।

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा, आवे राम सरन बड भागी एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले। भलो नाम सुआउ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ। साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ। सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान। आवत जात दो पाख पूरन पाइय सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है। चरण कमल बलिहारा रहाउ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाई सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ताको जा का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरा पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरै रहाओ बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजा।

जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनी है हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाव कहत सुनत किस शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सार महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगद होहे खिन्यंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असार्थ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यो प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी तू तत बार न लागे तां को ज्यो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन्यान न होरी सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ।

सरनारी जप तप संयम कर्म सुख साधन तोलना कछु ऐ लाहे चरण कमल नानक मन बेदेहो चरण है संग समाहे सारी महला पंजवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आग्या कुशल पाशै खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया विसरना जाई निमख हृदय ते पूरा गुरु मलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एका निव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताके सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहु के दुख ना व्यापै कोई रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत होए सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ मन तन धन सब तुम।

साध संगत कै बल बल जाई बहुड़ न जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाओ ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, साधु कै संग खाप, भगत वचल भय काटन हारे, नानक के माई बाप, सारंग महला पंजवां, आतुर नाम बिन संसार, त्रिपत न होवत कुकरी आसा, इत लागो बिखिया चार रहाओ, पाए ठगौरी आप पलायो, जन्मत बारो बार, हर का सिमरन निमख ना सिमरियो, जम कंकर करत खुआर, हो कृपाल दीन दुख पंजन, तेरिया संत है कीरा वार, नानक दास दर्श प्रभ जाचे, मन तन को आधार, सारंग महला पंजवां, मैला हर के नाम बिन जियो, तिन प्रभ साचे आप पुलाया, बिखै ठगौरी पियो रहाओ, कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति, हित नहीं कतहु पाई, पूरा सतगुर सहज न भेटिया, साकत आवै जाई, राख ले हो प्रभ समृत दाते, तुम प्रभ अगम अपार, नानक दास तेरी सरनाई, पव जल उतरियो पार, सारंग महला पंजवां, रमण कौ राम के गुण बाद, साध संग त्याई परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद रहाओ, सिमरत एक अचुत अबनासी, बिनसे माया माद, सहज आनंद अनहद तुन बाणी, बहुर न पये बिखाद, सनकादक ब्रह्मादक गावत, गावत सुख प्रहलाद, पीवत अमेओ मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद, सारंग महला पंजवां, कीने पाप के बहु कोट, दिन सरैणी थकत नाही, कतह नाही छोट रहाव, महाबज्जर बिख ब्यादि, सिर उठाई पोट, उगर गइयां खिनह पीतर, जमह ग्रासे झूट, पशु परेत उष्ट गर्धव, अनक जोनी लेट, भज साध संग गोविंद नानक, कछ ना लागै फेट, सारंग महला पंजवां, अंधे खावह बिसु के गताक, नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनाथ रिजान उदर लै पुख है, माया गईया हाट, किल बिख करत करत पछतावह, कभू ना साक है शांत, निंदक जमदूती आए संघारेओ, देवह मूड ऊपर मटाक, नानक आपन कटारी आपस को लाई, माने अपना की नो फाक, सारंग महला पंजवां, टूटी निंदक की अद बीच, जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ, उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे, इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे, प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी, कीता अपना पाया, नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया, सारंग महला पंजवां, तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कतहु बात है, अंत प्रतिहार रहाओ, सांत सूख ना सहज उपजे, यह इस व्यवहार, आप पर का कश

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीते।

मन मोहिउ अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो दुतिया भाव सब लूह रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तूहू। संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिन से हौ मैं हू। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिन से काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हृदय तार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे। सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले। नानक दास धूर जन बांछे उदरह लाग पले। सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखे कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहाव। कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह बिद देखी आखी। संता बिनत कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी

काढ़ी मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ती हर नानक रतन लहियो सारंग महल्ला पंजवा माईरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस तन मोर त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख पंजन परा पूर्ब ला जोर नानक सरन कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु हुए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारन महला पंजवा मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाय बिन से सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

अन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ। चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे। वर्त संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे। राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे। सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ। संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे। गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद। पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए।

हर हरे हर मुखोह बोल, हर हरे मन तारे रहाओ। श्रवन सुनन भगत करन, अनक पातक पुनः चरन।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहीं त्रास सिमरे अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप हरन नाव रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारंग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग रौ रहाव दृष्टो कस संग न जाए मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निदान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पये गुर बिकम गार तोरी सारंग महला पंजवा मन बेरा गैगी खोजती दरसार रहाव साधु संतन सेवक प्रयोही अरै त्यायो आनंद रूपी पेख कै

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की पास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

लासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सोउ जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू न हर गुण गायो बिख्या सक्त रहियो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

किया, ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई, नानक हर बिन करी न जीवा, हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला, हर बिन क्यों तीरै मन मेरा, कोट कल्प के दुख बनासन, साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता, प्रेम सदा नौरंगी, अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया, हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया, एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी, हर मेल लय बड भागी। अपरत सिंच पय सुपर सर, गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते निह केवल, आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा, बड़े भाग लिव लागी, साच विचार किल विख दुख काटे, मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा।

अद कहाई एक बिन मैं अवर ना जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथ

सूझै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावे, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावे। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै। नानक से जर थाए पए है, जिनकी पत पावे लिखै। सारंग महला पंजवां।

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो।

आवक कास्त संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे काट काट कथा राजन की चाल है कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी घर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंद्र उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भये निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देव कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिस संग ना कछु हूं जाई कहो नानक हर हर अराध हो।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया।

की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक पी जय साचे नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया सलोक महला।

देखे तंदे लाई, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाही। आवह नंगे जाही नंगे, विचे करह बथार, नानक हुक्म ना जानिए अग्गे काई कार। महला पहला, जिन सथाप जिया को भेजे, जिन सथाप ले जावे, आपे थाप उथापे आपे, एते वेश करावे। जेते जी फिरे अवतूती, आपे भिख्या पावे, लेखे बोलन लेखे चलन, कायत की चह दावे। मूल

गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगति आया, गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया, सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया, जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया, नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया, सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया, लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त संभाल, वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए, के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए, थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास, नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास, महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े, जीव जीव मोए मोए जीवे, केतियां के बाप केतियां के बेटे, केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे, क्या जाति क्या हुण हुए, सब करना किरत कर लिखिए, कर कर करता करे करे, मन मुख मरिए गुरमुख तरिए, नानक नदरी नदर करे पौड़ी, मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया, कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया, पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया, जम दर बद्दे मारी है परम है परमाया, मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया, सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे, नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद, महला दूजा कीता क्या सलाहिए करे सोए सलाहे, नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे, करता सो सलाहिए जिन कीता आकार, दाता सो सलाहिए जे सब सह दे आधार, नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार, वड्डा कर सलाहिए अंत ना पारावार पौड़ी, हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई, नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई, नानक आप दयाल हुए नामे लिव लाई, सलोक महला दूजा किस स्यों कैसा बोलना।

की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धुपै मुख पीतै तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलियां सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिये दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना उपावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुनू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

तीर्थ ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सब

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम, नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी, नाए मने सुख उपजे नामे गत होई, नाए मने पत पाईए हिरदय हर सोई, नाए मने पव जल लंघिए फिर बिघन ना होई, नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई, नानक सतगुर मिले नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए, पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करे देखै वारो वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवनहार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चर नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाही है पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाही सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुए बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होए लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोए रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगती आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हउमै तुटै तां को लिखिए लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाउ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाईऐ थाउ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद ना चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन ना भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समवाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम वसिया।

माया हिरियाणिया जमकाल निहाली सास आव घटै बेतालिया नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाण दे माया मोह सवाई दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए अन दिन नाम त्याएं दे नानक सच समाए महला तीजा सच वड़ंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया गुरमुख भये निरास परम सुख पाया विचे ग्रह उदास अलिप अलिप लाया उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया नानक हर सीती सदा रब रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए ओना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए जे आप परख ना आवई ता पारखिया थावो लयो परखाए जे उस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल्ले पाए धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए वस्त पराई आप गर्व करे मूर्ख आप गणाए नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारी पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित वेख विकसै मोह माया देश परदेश धन चुराए आन मोहे पाया अंत होवे वैर विरोध को सकै ना छडाया नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए पंडित मोनी पर पड़ थके भेख थके तन धोए बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार लोभ लहर सुध मत गई सच ना लगे प्यार गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार। महला चौथा
नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला चौथा सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह उठा शहबर लाए सब तरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तसै त्यावो संत जन हो जो अंते लय छाए हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख

नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया, हिरदय कवल परगास उन मन लिवलाइया, जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोए ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए महला तीजा, दात जोत सब

फेरी। नानक आप कराए करता, जो तिस पावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुर पूरै मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर।

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तो जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्से बस्तो होए होए सो उज्जै।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेह बा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मद लीनो मुख दीनी शार, गौ

गाड़े तरै हाथ संचै समझै नहीं मूड़। धन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

नामनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछुऐ, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किश तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागै ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कबीर।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर हर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाव नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

पार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनो नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईए हर मेले मेलन हार मलार महला पहला कर दूजा

जानिया है माए अणदीता किस कहन ना जाए क्या करे आख बखानी है माए रहाउ ऊपर दर असमान पयाल क्यों कर कही है देहो विचार बिन जेहवा जो जपै हे आए कोई जाने कैसा नाऊ कथनी बदनी रह ने परांत सो बूझै होवै जिस दात एहन से अंतर रह लिवलाए सोई पुरख जे सच समा

मन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट ससाचे नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजे दे अंत

सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावै सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको

कोई परम पद पाया वड्डी वड्याई होई अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई मन रे गुरमुख हृदय विचार तज कूड़ कटंब हउमै बिख तृष्णा।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ न होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

एक प्रभु जाता दूजा अवर ना कोई, आपे करे कराए प्रभु आपे, आपे नदर करे मन तन राता गुरु की बाणी, सेवा सुरत समे अंतर वसया अलख अपेवा, गुरमुख होए न खाए, नानक जिस भावै तिसे आपे देवै, भावै तिवें चलाए, मलार महला तीजा तो तुके, सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान, गुर शब्दी चूकै अभमान, जिनको ललाट लिखिया धुर नाम, अन दिन नाम सदा सदा त्यावह, साची दरगाह पावह मान रहाउ, मन की बिद सतगुर ते जानै, अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान, गुर शब्द रते सदा बैरागी, हर दरगाह साची पावह मान, इहो मन खिलै हुक्म का बांधा, एक खिन मह दह दिस फिर आवै, जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा, ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै, इस मन की बिद मन हू जानै, बूझै शब्द विचार, नानक नाम त्याए सदा तू, भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा, जियो पिंड प्राण सब तिसके, घट घट रहे आसमाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ, मन तन पीजै एक लिव लागै, सहजे रहे समाई, गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै, एक नाम लिवलाई, गुर बचनी सच कार कमावै।

पांड उतारै, अनदिन एको नाम वखाणै। सतगुर की ओहो दीखिया ले, सतगुर आगै सीस तरे, सदा अलग रह निर्वाण।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिया सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

मनमुख मोहे मुग्ध गुवार, अन दिन तंदा करत विहाय, मरमर जम्मह मिले सजाय, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाई।

गुरमुख तुरिया गुण उर धार, गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए, चहो जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा, कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन दिन हर हर त्यायो हिरदय, मत गुरमत दुख वसारी, सब आसा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभ कृपा तारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो, जन हर भेट्यो बनवारी, रहाउ जिन ऐसा नाम वसारिया, मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी, हर तिसकै कुल परसूत ना करियो, तिस विधवा कर महतारी, हर हर आन मलावो गुर साधु, जिस अहनस हर उर तारी, गुर दीठै गुर का सिख बिगसै, ज्यों बारक देख महतारी, तन पिर का एक ही संग वासा, विच हौ मैं पीत करारी, गुरपूरै हौ मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी, मलार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाय, सत संगत की धूर परी उड़ नेतनी, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर

कीने तितने सिर कार लखावै हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारै लावै सतगुर हर हर नाम जरड़ावै हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावै रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावै हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावै परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावै निर्जियो पूज है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावै ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहियै हर हर कथा सुनावै तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवै सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावै मलार महला चौथा जिनकै हियरै बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हौ तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो हो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तौ मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निद नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हिरदै बसहै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करिया तजियो सगल अंदेसा कार्ज सगल आरंभियो कर।

गुरु कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्द खल खरते, कागर नाव लंग है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते, राग मलार

प्रिय संग राती एहं मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनहु बसारे।

आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास

रब रहियो सब अंतर सर्ब रहिया पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप है करुणा मैं नानक सद बलिहारी मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जन सियो जाओ ना जम कै घाट रहाओ तार अनग्रहो।

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग न जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनु कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानु।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवह दास तेरे।

कंठ लाए अपनो दास राखियो, ताती वाऊ न लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रम पौ मेट सखायो, महानंद करहु दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवां, चौपदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाई है मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला।

राखे सब जंत गुण गावहु नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जानह प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान ब्रह्म पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहे नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

नह दुख सा कहलाही। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाही। मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायु नानक जा कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारी। रहाउ दर्स सफल्यो दर्स पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी। विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी। जन नानक सरन द्वारी। मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो मिल संत ना।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिय बिन श्रृंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पे।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिए साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। ऊडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा कह मागना चालन हार। जित कर वसे है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने पाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने पाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै पाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल परगास, तित काट नामे नाम निवास, हम मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजे ना सुख होए, कह कह कहन आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाई, से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नाम रहे लिवलाए, सद ही नाम वेख हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

पतत पावन भगत वत्सल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो संहारी हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन ना जानिए गह पुजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाई शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाई जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। सलोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढोले बाह भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही। महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू।

राम राजा आया दैंता मारी ताई हुक्म सबाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदे लाए।

सखी संतै चित करे हो। नानक चूर मरहै दोहागणी जिन अवरी लागा ने हो। महला दूजा सावणे आया हे सखी जल हर बर सुनहार। नानक सुख समन सोहागणी जिन सह नाल प्यार पौड़ी। आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख विण कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए। नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन पाऊ पाऊ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न हुई महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यों मन भंग पौड़ी दोवें तरफा उपाय एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवें विच धर्म फिर रह वारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चले कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघ गै हक किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

ऐसे पुत भंडार उथे हाथ ना अपड़े कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजे दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिले आ जाई आपे जोड़ बछोड़े।

आई। नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवे है सदा रंग राते, हम मैं तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार। नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोली है, बिन तोले पाया ना जाय। गुर कै शब्द विचारी है गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोल सी आपे मिले मलाई। तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाय। हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय। जगत मुस्से अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाई। बिन नावे नाल ना चल सी जासी जन्म गवाई। गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किसना वसाई। सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए। एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्ने ते खोतरै चढ़ै चवगल वन।

धनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

जल पाई विचों आप गवाई नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पौड़ी आपे जगते उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार श्लोक महला पंजवां रात ना विहावी।

गुर कह सहज सुपाई मेघ वर्षा दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई।

तन्नै शाज देन दुआई से मरह जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई कित्थै जाहि समाहि फसल आहारी।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे वहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सकता।

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल घटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे

आई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई। सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडिया जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नाओ फकीर जिनकै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे है दुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी भुख रूपी भुख ना उतरे जा देखा ता भुख जेते रस शरीर के तेते लगे है दुख। महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधे ताने अंध चिक्कड़ लाया क्या थी है जा टुटे पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ। महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिरसा लख लश्कर लख वाजे नेजे लखी घोड़ी पातशाह जिथे शायर नंगना अगन पानी असगाह।

सच पछाणीए लिखिया पल्ले पाए सो सच जानीए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानीए भौजल तारन हार शब्द पछाणीए चोर जार जुआर पीड़े कहानीए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणीए गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानीए।

किंत का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया सो पंडित भी।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन तत्या।

पहला मासो निम्मिया मासे अंदर वास जियो पाए मास मुहि मिलिया हड चम तन मास मासो बाहर कढ़िया मम्मा मास ग्रास मुह मासे का जीव मासे की मासे अंदर सास वड़ा हुआ व्याहिया कर ले आया मास मासू ही मास उपजे मासू सबो साक सतगुर मिले है हुक्म बुझी है ताको आवे रास आप छुट्टे नह छूटी है नानक बचन बनास महला पहला मास मास कर मूरख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे।

गुड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाने हर कर लोका नो दिखलाव है ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे स्यों क्या कही है कह ना कहया बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उते मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास प्राणी मास कतेबी चौहो जुग मास कमाना जज काज व्याह सहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजह मासो पात चाह सुल्ताना जे ओए दिस है नरक जांदे तां उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो इहो तिंगाना।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई शुद्ध।

गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या बैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जांचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जांचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाकै भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अश

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरे कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नाम

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइया हर ब्रह्म जोग हर पाइया सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रबलादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ बिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइए गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मने साधारे कोट पराधी खिन महतारे जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर

असना अकबार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते तहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जा कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों

मन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी होर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ़ो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सर

उत्तर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याह मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को ना।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

कीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम करो।

भरम सगल अभमान कान राम हल्ला पंजवा प्रब कहन मलन दहन लहन गुर मिले आन नहीं उपाऊ रहाउ तटन खटन जटन होमन नाही दंड धार सुवाऊ जतन भांतन तपन भ्रमन अनक कथन कथते नहीं थाहा पाई ठाऊ सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाऊ कानड़ा महला पंजवा कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत बच्चल पै हरन तारन तरन रहाउ नैन तिपते दर्स पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूर्ण दुख बन

आय पतत पावन बिरद स्वामी उदरत हे हर त्याय रहाव संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोबिंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इनस्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाहे अपने आए।

कछु न जानहु कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निध, जन नानक संतरे नाई,

अरबिंद सासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नामे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तैं अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावै गु, राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु, नाम सुनै नामो मन

माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर पेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गू, जो जो जपै सोई गत पावै, ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गू रहाउ। कृपा कृपा कृपा कर हर जियो, कर कृपा नाम लगावै गू, कर कृपा सतगुरु मलावहु, मिल सतगुरु नाम त्यावै गू। जन्म जन्म की हमै मन लागी, मिल संगत मन लह जावै गू। ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट, लग शब्द गुरु हर पावै गू। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गू। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, खड पानी कीकड़ पावै गू। भगत जना के हर रखवारी, जन हर रस मीठ लगावै गू। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुर उपदेश समावै गू। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवह ता फल गुण पावै गू। जो निंदा दुष्ट करह भगतां की, हरनाक्ष ज्यों पच जावै गू। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गू। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावै गू। जात निजात देख मत परम हो, सुख जनक पगी लग त्यावै गू। जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल ना डलावै गू। जनक जनक बैठे सिंघासन, नौ मुनि धूर लै लावै गू। नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावै गू। कानड़ा महला चौथा, मन गुरमत रस गुण गावै गू। जिहवा एक होए लख कोटि, लख कोटि कोट त्यावै गू रहाउ। सहस फनी जप्यो सेख नागै, हर जपत्या अंत न पावै गू। तू अथाह अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावै गू। जिन तू जप्यो तेई जन नीके, हर जपत्या कौ सुख पावै गू। बिदरदासी सुत छोक शोहरा, कृष्ण अंक गल लावै गू। जल ते ओपत पई है कासत, कासत अंग तरावै गू। राम जना हर आप सुवारी, अपना बिरद रखावै गू। हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर, गुर संगत नाव तरावै गू। ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो, संत जना मन पावै गू। खरे खरोए बैठत उठत, मार्ग पंथ त्यावै गू। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पाधर मुक्त जनावै गू। सासन सास सास बल पाई है, निह सासन नाम त्यावै गू। गुर प्रसादी हम मैं बूजै, तौ गुरमत नाम समावै गू। सतगुर दाता जी जीअन को, भागहीन नहीं पावै गू। फिर एह वेला हाथ न आवै, पर तापै पछतावै गू। जे को भला लोड़ै भले अपना, गुर आगै टह टह पावै गू। नानक दया दया कर ठाकुर, मैं सतगुर भस्म लगावै गू।

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर अपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैजर खावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गु। सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गु दयाल दीन भए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गु। सतगुर सरन पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गु जे को सर समदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गु। हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गु। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावै।

साकत नारद सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावै गो, लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावै गो, राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावै गो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाई, तन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागी, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बिकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाई, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सत संग पाई हर त्याई, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांच है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काले, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाय नित त्याई, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रत्न बांधो पाले, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी, गुर शब्दीन लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटी है, हम मैं चुके गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। महला चौथा, हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन मन वसिया आई। सतगुर के भाणे जो चले, तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो, जन वेखो मन पति आई। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाई। पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है, करते सब तेरी बणत बनावनी। रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहो बहो विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है, गुरमति तुदै नावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो, श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस। हर अमृत हर उरतार, विच संगत हर प्रभु वरतदा। बुझो हो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया। विख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेतियो। तिन जूए जन्म सब हार, गुर टुठे हर केताया। हर नामा हर उरतार, जन नानक ते मुख उजले। तित सच्चे दरबार, महला चौथा। हर कीरत उत्तम नाम है, विच कल युग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाई है, हर नामा अर हुर हार। बड़ भागी जिन हर त्याया, तिन सौंपया हर भंडार। बिन नावे जे कर्म कमावने, नित हों मैं होए खुआर। जल हस्ती मल नवाली है, सिर पी फिर पावे शार। हर मेलो सतगुर दया कर, मन वसै एकंकार। जिन गुरमुख सुन

आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावह तुद सफल से गावह, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु मत उत्तमा, गुर सत गुर कै पग पाह, सत संगत हर मेल प्रा

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सती।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ महार हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाय।

चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस से गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिय सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम राव रहे राम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसै जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम त्याया गुर बचन जपियो मन कीता महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वसै बट भाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी
तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पाणी हर कथा सुनावहु मेरे गुर सिखहु मेरे हर प्रब अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाणी तिन विटोह नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी सलोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम

नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघा

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काड दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जप हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदैनो अराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगे दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण अराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार हुए, हाटे जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगीत राही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस

तारे तुमरे तू बड पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत करह तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहू पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकै प्रभ तुमन्थे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी।

हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दरगह प्रभ लिखा मांगे तह छूटे नाम त्याई थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नवाई सब किल विक पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ।

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुगद इयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

कल्याण भोपाली महला चौथा एका ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंता मणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

फल दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाउ ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंदरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै सगल जपह तरंगी।

वेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूं रहाऊ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर सरन परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मधे मुक्त कहूं कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन हर

कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हूँ जग थमन को थम दी जय। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परी जय। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मली जय। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दी जय। साधु साध साध मन प्रीतम।

अब लग सास सास मन अंतर तत बेगल सरन परिजय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखीजै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै तिल बिख दहन होहे खिने अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाउ मंगत जन दीन खरे दर ठाढे अत तरसन को दान दीजै त्राहे त्राहे सरन प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै काम क्रोध नगर मह सबला नित उठ उठ जूझ करीजै अंगीकार करहु रख लेव हो गुरपूरा काड कढ़ीजै अंतर अगन सबल अत बिखिया हिव शीतल शब्द गुर दीजै तन मन शांत हुए अधिकाई रोग काटै सूख सवीजै ज्यों सूरज किरन रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजै साधु साध मिले रस पावै तत निज घर बैठिया पीजै जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यों चकवी देख सूरीजै निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख काढ़ै अमृत पीजै साकत सवान कहियै बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परिजै आपन सवाए करह बहु बाता तिना का वसाहु क्या कीजै साधु साध सरन मिल संगत जित हर रस काढ कढ़ीजै पर उपकार बोलह बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै।

भवन पवे तहु हे सब जह साधु चरण तरी जय तज लाज अहंकार सब तजी है मिल साधु संग रही जय धर्म राय की कान चकावे बिख डुबदा काड कड़ी जय परम सूके बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरी जय ताते बिलम पल ढिल ना की जय जाए साधु चरण लगी जय राम नाम कीर्तन रतन वाथ हर साधु पास रखी जय जो बचन गुर सत सत कर मान तिस आगे काज तरी जय संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढ़ी बाह को की जय जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ हो ता सतगुर शरण पवीजै जे वड भाग होए अत नीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीयै सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार ला।

राग राग प्रभाती बेपास महला पहला चौपदे कर पहला नाई तेरे तरना नाई पत पूज नाउ तेरा गहना मत मकसूद नाई तेरे नाउ मन्ने सब कोए विण नावै पत कबू ना होए।

तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाउ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

खुवार। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोटी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई

शिव ज्योत कन्हों बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जा कै बरत नाही नेम नाही नाही बक बाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जा कै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहया समवाई जो किस वरतै सब तेरी रजाई रहाव प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुर उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

नावण पशु परे तो देव करै रत्ता सच नाम तलहील सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर तास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

पंच तस्कर तावत राखी, चूका माने अभमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। खिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया,

जाय। जो किछ करहै सोई पर होए बा, अवरना करना जाय रहाउ। जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है। तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर पर गास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी। कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण। जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरी उदासी सो प्रवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिस कै बल जाई। पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजान। बोलो सच नाम कर।

कहो समझावण जाइए, जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभात है शब्द ते आई है, छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, मन माया मन ताया, मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया, नगर बुठा साबास, जहां तू राख है।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पुठो।

आई, जात जन्म नह पूछी, सच घर लेहो बताई। सा जात सा पत है, जे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए, नानक छूट सुनाई। प्रभाती महला।

कह कहावे सूई प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पहंदे घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाऊ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादी मारी है छूटस साच नाय जिव आया तिव जाय सी किया लिख ले जाय मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाय जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप, नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला, गीत नाद हरक चतुराई।

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाउ मूल पछाणन तिन निज घर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला दूजै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मान सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

तम हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ साकत को।

काल सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल देख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर राम नाम।

जन टीका हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक जैसे शिंगार करे देह मनुख नाम बिना नकते नक कीक घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब मह ईक जन नानक को हर कृपा तारी गुरबचन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप नहे जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायु गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाउ काया नगर नगर हर बस्यो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे जन नानक कौ गुर हाथ सिर धरयो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अरै हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमुखफा हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बस पा रहाउ काया नगर वसेउ घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन भये सोहेले मुख उज्जल गुरमुख तरफा अनुपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारियो गुर निमुख पा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख फा हर हर आप धरियो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कडबा जप मन राम नाम अरधंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभानी पुत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठसठ माजान सुन मन गुरमुख पावह मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवै पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोग ते रह निरारा ता तू पावह प्राण पते रहाउ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए
मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे, कोट पराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे।

राधी अपने सतगुर कै बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ती।

गुरपूरा पाइए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान।

अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

साध संग हुआ परगास, चरण कमल मन माहि निवास, जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसह नवाजे

वहां चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

राम मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

वह साध दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर

काई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाणा बोली भाई सुपाई।

सरनाई मनमुख मुगद आगे चीतै नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचिय हर अभमान न जाई जियो अभमाने पै पचिय भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा छुटक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजे पत

कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तौ मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, ज्यो पावै त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहज सहज मिले सुख पाईए, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी,

खुन त्रै मिल जगते उपाया, ऐसा बल छल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जागे अंदर, परख खजाने पाया। जात वरन ते भय तीता, ममता लोभ चुकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल, दुख हों मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले, जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया,

सोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर विरोध छेडे पै परमा प्रभ पुने आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न।

तेरा पाना जो इव बूझे सो सहज सुमाना कहत कबीर किल बिख गए छीना मन भया जग जीवन लीना प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किसकेरा हिंदू मूरत नाम निवासी दोहो मह तत ना हेरा अल्लाह राम जीवो तेरे नाई तू कर मेहरामत साई रहाऊ दक्षण देश हरी का बासा पश्चिम अलह मकामा।

माहे निदाना कहां उड़ीसे मज्जन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाउ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह विनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत याद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बीचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आदि जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजय शब्द बाजय आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन भीखू बन भीखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पै

भज जन्म सिरात है कहूं कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे गोविंद।

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

कार कारण करते वस है जिन काल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लख्यण नानक जेहे सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडलै विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अचुत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं हर।

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसयंतरिक्षं त्यागमानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य भैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरूढ़ते असवरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन।

जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं पै पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं बसंते समीप केह रह ततरगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते छलं सिदरं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमर।

भेद भरमं साकत पिसनं ता सुरजनह अस्थितं सोगहर्खं पै खीनं ता निर्पवह पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लख्यन प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समाप्त।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थक अंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे।

दुत्र है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है, भगत वच्छल अनाथ नाथी।

जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत जठर रोग।

सिमरणं सर्वत्र जीवनः लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतनः मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा।

अंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः अचेत मूढ़ा न जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटांब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रियतवं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग ता मेरंग सहकंग ता हरियंग बूडंग ता तरियंग ऊणंग ता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निहपल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं।

पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हं साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंत।

परहार नह बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुर जीण चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी पावनी साध संगेन लभंतंग बड भागन है हर नाम गुण रमणं।

सुमंत्र साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत है हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार।

नानक वडभागी भेट अंत दर्शन है, सर्ब दोख प्रंत्यागी सर्ब धर्म दृढ़ंतरण है, लबधेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है, होयो है होवंतो हरन भरन संपूर्ण।

कसों वरंगण है रोग सोग वियोग नानक सुख ना सुपन है। हुनहि महला पंजवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुख हो तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाईए सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाईए हर हां कंतै बाज शिंगार सब बिरथा जाईए जिस घर वसिया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराईया हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाईया आसां इती आस के आस पुराईए सतगुर भये दयाल तां पूरा पाईए मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

आंगन सुख बासना, सखी मूरै कंठ रतन, पेख दुख नासना, बासो संग गोपाल, सगल सुख रास हर, हर हां रिद सिद्ध नव निद, बस है जिस सदा कर, पार त्रय रावण जाहे, सेई तां लाजी है, नित प्रत हिरह पर दर्ब, छिदर कत ढाकी है, हर गुण रमत पवित्र, सगल कुल तारई, हर हां सुनते पए पनीत, पार ब्रह्म बीचारई, ऊपर बने आकाश, तले तार सोहती, दह दिस चमकै बीजल, मुख को जोहती, खोजत फिरो बदेश, पियो कत पाइए, हर हां जे मस्तक होए भाग, तां दर्श समाइए, दिठे सबे थाम, नहीं तुद जेहया, बदहो पुरख बधातै, तां तू सोहया, वसदी सगन अपार, अनूप राम दास पुर, हर हां नानक कसमल जाहि, नाय राम दास सार, चात्रक चित सुचित, सो साजन चाहिए, जिस संग लागे प्राण, तिसै कौ आहिए, बन बन फिरते उदास, बूंद जल कारने, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम, नानक बलिहार ने, मित का चित अनूप, मरम ना जानी है, गाहक गुनी अपार, सोता

है सच तना सुपना ऊ भी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयोग।

सब जावई। औखद नाम अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई। जिसै प्राप्त होए तिसै ही पावनी, हर हां हौ बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे,

प्रीत प्रेम तन खाच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे लख घाटी ऊंचो घनो चंचल कीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट भयो।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया

बोल नहीं पट्टण नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल कबीरता स्यों प्रीत कर जा को ठाकुर राम पंडित राम।

आए हों बलिहारी तिनको पैस जो नीकस जाए कबीर यो तन जाएगा सको तने हो बोर नांगे पामो ते गए जिनके लाख करोड़ कबीर यो तन जाएगा तमने मार गलाए कै संगत कर साध की कै हर के गुन गाए कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुत।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी।

होए, अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयंग। कबीर लूटना है ता लूट लै,

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो

कह काजर चहो दिस लागी आग, खिंथा जल कोयला पई तागे आंच ना लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूट मफूट, जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बेपूत। कबीर थोड़े जल माछली चीवर मेले ओ जाल, ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो।

वैष्णव की कुकर भली साकत की बुरी माय। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाय। कबीर हर

वीर मैया कंठ में चूकह सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय। पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं।

मुए चार पुरख दोए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया कहू ना पाया ठोर, जिन हर का नाम ना चेतेऊ

जिन हर का नाम ना चेते हो, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख

आई सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार गद ही हुए कह अवतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांदल कंध चढ़ाए।

जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल।

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तर

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संखम चूर देवल देवल ताहड़ी।

आग कबीर संत की गैल ना छोड़ी है मार्ग लागा जा पेखत ही पनीत होए पेटत जपिए नाम कबीर साकत संग ना कीजिए दूर है।

होएगा। जो सिर पर आवे काल, कबीर ऐसा जन तिक देखिया, जैसी तोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मत ही ना।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परे ओ कट।

राम कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर।

बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताजमान का अपमान, ऐसा कोई दास हुए

होए ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला राम।

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर में मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजै

पाछै परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस काल।

संत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कह जाने आपन तनी कह दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पान।

के बिन मिले पलट भई सब खेहे जह अनपौ तह पै नहीं जह पौ तह हर नाही कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

हलाल दफ्तर लेखा मांगिया तब हुए गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन में भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर रामै राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

एक आर मरहट सार के पूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں، جب آپا پر کا مٹ گیا جت دیکھو تت تو کبیر بک

कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए। महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना व्यापे।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

योगन कर काहे की कुशलात हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोगे अजान ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाह।

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाईए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे।

नीचे लोहन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहन क्यों करो सब घट देखो पियो सुन।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहि। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बेदो माहि। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

मा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद रीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहनगे दुख रुखी सुखी खाए कै।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप एहो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

सजाए तिनाहा फरीदा कन मसला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात फरीदा रत्ती रत ना निकलै जे तन चीरै कोए जो तन रत्ते रब सिउ तिन तन रत ना होए महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होए जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रत ना होए पै पै तन खीण होए लोभ रत विचों जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक ते जन सोहणे जे रत्ते हर रंग लाए फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछां भी पलियां रे मन गहले बावले मान है क्या रलियां फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े निवार

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता परिदा मंडप माल ना लाई मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

दास परिदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज परिदा पन्नी कड़ी समन्नवी।

पंजे वखत मसीत कोठ परिदा उजू साज सुबहा निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिबे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मन

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए।

फरीदा हो बलिहारी तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन कथाऊ नाही फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे जिन्नी वेसी सौ मिले से ही वेस करे महला तीजा काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी स्यो टिब्बे ज्यो मेहा फरीदा किन्ना मुख डरावणी जिन्ना वसारे उन नाऊ ऐते दुख कनेरिया अगे ठौर ना खां फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह।

यो न वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवां फरीदा दिल रखा इस दुनी स्यों दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाये पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नू दात दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडेंदिये सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाउ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन होण नजीक खुदाई दै भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्न चालिए दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हौ टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे देखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुवे बग बपड़े सिर तल उपर पाऊ मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागहो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित वासे आवै कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वासे आवी कंत मत हुंदी होए आणा तान हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापत देखी है जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक है अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करै बीचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक।

आप ही धारण धारी कुदरत है दिखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हो ही कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैक मन सब सुन।

करियो सच सिरजियो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवै अमुलो जेहे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरे

जल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ भगत इहो मन ठहरावे। बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हसानी।

करन शरण मन मोहन जोहन पाप बदारन को हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलह समूह उदारन सौ चेत चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पाऊं।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप गूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरुहु अगम अपारुहु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारुहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई

सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत।

आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

आस तुझह समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

सर्ब कला गावह सनकाद साध सिद्धादिक मुन गण गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाई रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावे जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावह पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायो।

सप्त दीप मजार लहणा जगतर गुर पर सुमरार तै तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बथार साधक सिद्ध सुजन।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परसे कल समुल वै,

प्रसन्न सब रंग सहज कल उच्चरै जस जंपो लहणी रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समार।

है। नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए, दर्शन परसे है गुरु कै हठ सठ मज्जन होए। सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच, सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच, कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान। हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल, सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे। गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे, सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई, दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। सोइये महले तीजे के

जति तपीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पतामह चरण चित अमृत रसिया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरन रब सुरतर साख है उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है जन्म ता एहो सकिया

मुखहु भगत उच्चर अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रह हाथ ता पर सके अत हाथ लगे है गुर अमर पै जीही ता पर सके अथ जीही गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

जानियो। सुपन एक प्रतख एक, एक समहलीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो। इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्णियो। गुरु अमरदास जाल पपन है तू एक लोड़ है एक मन्यो। जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी। रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास ने।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लही है पौ मुक्क है। गुर अमरदास परसीय अपौ लबे गौ चुक है। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास दिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहु। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहु। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधात निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियु। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियु। जह कहत है परपूर शब्द दीपक दीपायो। जेहे सिख है संग्रहियु तात हर चरण मलायु। नानक कुल निम्मल अवतरियु अंगद लहने संग हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो। जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है। सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है। भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है। गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार। नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण कर तार उचरै। गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिक

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उप

दिन्त हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

कै सतगुर शब्द अथाह हमें तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै कै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बडभागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज सवान संतोख सराचो सदा सील सनाह सोहै गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बोहै आजोनियो पल अमल

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

दस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै तिहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बिचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान

ओंकार अकथ कथनहार तुझै बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संघार जम को ना दंड काल गुरमत।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

कियो ते अकियाथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

भूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह कुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहण पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौहो जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंद है जो चरण सरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जा।

जग जन्म मरण भगा हे आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुनह गाव है प्रभाते है करह इशनान इशनान करह प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हों बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आ

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

माल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो। अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो। सत साच श्री निवास आ

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो कल।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर

तर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहो लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह जो कुसुम सुबासे विदह मान गुरे आप थप्यो थिर।

गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहे ओ सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी संभो, पुरखोत्तम अपार परे।

जग मह तैं हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज धारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा, उब भगत हर के जो गण। अम्बरीक जय देव तरलोचन, नामा अवर कबीर भणंग। तिनको अवतार भयो कल भिंतर, जस जगतर पर छायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझै नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिनंग। बाचा कर सिमरंत तुझै, तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग। कर्म कर तू दर्श परस, पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो। जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै। सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करहो। जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरहो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करतना छोड्यो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासर हर चरण निवास। ताते संगत सगन

सिखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बडभागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आली।

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुटै गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो पै निरपहु माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

तायु गुरु अर्जन कल उच्चरै तै जन कह कल सुदी पायु सोरठे गुरु अर्जन पुरख प्रमाण पार्थव चालै नाही नीजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियु।

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और ए काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर।

गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी।

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहीं पौ नानक दुनिया कैसी होई।

दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्ले उठी चल्ले साध नाही अवेही गल्ले राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लै गया दह सिरू

अंतर तिसना अग जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिल ही वग साग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर भाई साला ही सालाहना ही सच्चा साला ही नान

गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए नानक हों हों करते खप मोए।

गुर शब्दी हर मन वसे माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाण जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती पहु मन पवै

ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल।

ਹਰ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਅਤੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ।

भई मर जीवया सहज सुभाई नानक भगती रतिया हर हर नाम समाई मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात मोह।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौ सद बनिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

है। नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे। चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद। गुर प्रसादी बुझी है सा तन सुती निचिंद। जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुर गोविंद। नानक सहजे

तब देखिया ब्रह्म सोपाय, नानक सतगुरु बोहित है वड भागी चढ़े, ते भवजन पार लंघाई।

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

उठिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुखा करा उपर हर चीतिया से पाइन मोख द्वार। नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार। शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे। हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई। मन मुख मुआ अपना जन्म खोई। हर नाम ना चेत है अंत दुख रोई।

सदा सदा हर गुण रवहै, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हऊ मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुभाई ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख जूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाय, बुरा करे सो केहा सिज्जै अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

भाई अपनी पत के साध आपे खाए, किसका क्या सलाही है भाई, दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई, कर्म मिले ता पाए। एक हुक्म मन ना जाननी भाई, दूजे भाए फराए। संगत ढोई ना मिले भाई, बैसन मिले ना खाऊं। नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई, जिन्ना तुरे कमाया नाऊं। तिन विट हो हों वारिया भाई, तिन को सद बलिहार जाऊं। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अनदिन सेवन गुर अपना अनदिर अनदिर हन। नानक से मुह सोहणे सच्चै दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां, सच बोले है सच कमाहे। सच्चा शब्द मन वसिया, सतगुर माहे समाहे। सच्ची राशि सच धन, उत्तम पदवी पाहे। सच सुन है सच मन लैन, सच्ची कार कमाहे। सच्ची दरगाह बैसना, सच्चे माहे समाहे। नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ, मन मुख भूले जाहे। बाबीहा प्रियो प्रियो करे, जल निद प्रेम प्यार। गुर मिले सीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार। तिस चुकै सहज उपजै, चुकै कूक पुकार। नानक गुरम

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु सच रहो।

पास सतगुर मिले है जल पाईए चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए बडड़े चाल चाल चलंबले

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सौ कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सत गुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तेखी उतरै तन मन शीतल होए वाह वाह सत गुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सत गुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सत गुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सत

नानक सतगुर वाह वाह जिस ते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण परमान

फरमाया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए।

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग

नाम त्याय अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आय हृदय कमल पर गासिया ज्योति ज्योत मलाय नानक सतगुर तिन को मेलियोन जिन तुर मस्तक भाग लखाय अंदर तिसना आगे है मनमुख भूख न

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंघाए, गुरसिखा की हर तूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बधारियन,

आया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

आग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एहो राग जामू एक ता लख तौ जीती पिन्नड़े दर कितड़े बामण बिरथा गयो जन्म।

ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ।

गन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवाटड़ी इकस सौ चित लाए दूजे पावी नानका वहन लड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया

कहु नानक पज हर मना पर ना जम की फास तरन आपो इउ ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे।

मुद्दा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याणपा लख होए ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों किरपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवां। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होए बिचारो तित कर गावहो सोहेला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखिए आखण तोट न होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिलया है सुख होए, निज कर महल पछाणिए नजर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतर है बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारी है अवरते अगयास। नानक देख दिखाई है हो सतबलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख न उठिए पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास। अंतर गुरमुख तू वसै जो पावे त्यो नरजास, जिया रे राम जपत मन मान। अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तै हो मैं होए बिनास। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दर गए पैना।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किने ना पाई है रिदमान कमोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जम जम दारन लग गई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अगुणे आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली रहाओ। तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

करे जहानो जो तिस पावै नानका हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा।

वास श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काओ कुटारा कर सके ज्यो साहेब राखे त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आन जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तो मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेवक माणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना तेवरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करे मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करे नवखंड राज कुमाहे बिर सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरे ओना तिल ना तमाए जो प्रभावे सो थीए अवर ना करना जाए जन नानक जीवे नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कारक मामणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसके सच वसै सच

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिस पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दुई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचहु मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दो हागण तन सिंगार। सेजै कंतना आवई, नित नित होए खुवार। पिरका महल ना पा।

आओ आपे जग जीवन सुदाता आपे बक्स मिलाए जी जानते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ाई आपे सेव कराए दे कुटा मोए लोभाना चलद्या नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जो दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलया आए गुर शब्दी साला ही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे ना विछड़ जाए जो कुछ करना सो कर रहा अवर ना करना जाए चिरी विछुने मेलिया नो

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाहीं काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल, जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए, श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वर नहार, माया काम व्यापिया समझे नाहीं गावार। उठ चलिया पछताया परया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे। रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार, पहला पहर तंद गया दूजे पर सोया, तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया। कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान। जिस ते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान, नानक डिठा।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेणका अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रवेक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुर दर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवां, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया।

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राखदाया।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवे सांत एक मन एक ते आइए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोय ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हउ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंत्र हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किस सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निम

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखे सो रह समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

सतगुर से प्यार, क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रतागृत स्यों सब फुल्लां की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्यां दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवा, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया तां तनखा कूराल। मन बैराग पया दर्शन देखना का चाओ, तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसया कंत कार जी।

कहो नानक गुर परम काटिया। सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा। दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोह हूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कश नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा कर सतवा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहार नै तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर सही पुरख सुजान तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समर्थ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा गमापा।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद सेख मसायक काजी।

अंबड़ कोई न सकई, यहों किसनो पुछन जाओ। वरना वर्ण ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशी वा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योति अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदा

आर संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाईऐ सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

दुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइय गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अदको त्यो सुख कणो मंतन सां शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सो जी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंख नू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहं आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुखे आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुले भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना पर्यंक समाए रहाओ भूली फिर

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सहि सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईऐ शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भक्त ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै दूजा पाओ न जाणै सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै एको पड़ै एको ना बूझै दूजा अवर न जाणै खड़ दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाउ चेतै ता गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भक्ति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुणी उचरै भक्त करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे हर नाम वसिया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना दे वै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट न किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेखै कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो परतापदा सतगुर बाजना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम भुलाया आपो तो दुखवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जना के नाही जियो दोहागणी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमाणिया मैले वेस्त ना कामणी दुखी रहन विहाय जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लय मिलाए जियो हुक्म जिन्ना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सही आसे सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे कार रसाया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानी है जो सब सह ले मिलाए जियो सतगुर मिलिया फल पाया जिन विचों अह करण चुकाया दुरमत का दो कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नजर करै निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिया जित मिलिया नाम वखाणिया सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हाँ सतगुर विटों घुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नजर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माहे समाया तन करता आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया मेरा प्रभ सब किश पाया आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवकी पैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत नेहरा माया मोह सबाई संजोगी आया कृत कमाया करणी कर कराई राम नाम।